میرم دروما دلشا بینی سو هستینی سو مدورم هاشینی سو کدام

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ और 7104 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई मास की 13 तारीख व दिन है सोमवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामयांग फो और सुक्षी शिकारिका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गेरी, मुनपो में उद्घोषक श्री संगीता शी तथा अन्य सहकर्मी के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून बनी। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर

0: matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for 6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने

0: में चार नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया छठा नीलगिरि श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरि को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
1: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित तीन प्लेटफॉर्म INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
2: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा

0: के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए मनोहर दास के स्वर में श्री लक्ष्मी वंदना।
3: लक्ष्मी गायत्री गायत्री मंत्र के समान ही महामंत्र है। गायत्री परात

पर ब्रह्म के ध्यान से सिद्ध होती है। उससे सांसारिक विभूतियों के कारक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। किंतु लक्ष्मी तो प्रकृत सृष्टि का साक्षात स्वरूप है। यदि संसार के ऐश्वर्य धन धान्य के अभावों के कष्टों से संघर्ष करता व्यक्ति लक्ष्मी गायत्री का जाप करता है तो वो अभावों के समुद्र को बिना प्रयास ही पार कर जाता है। लक्ष्मी गायत्री से व्यक्ति जीवन की सुविधाओं को भोग कर प्रभु की कृपा से सुखद शांति प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सूक्त को होम पूर्वक पूर्ण करके लक्ष्मी गायत्री के जप की 11 मालाएं फेरने से मनुष्य के दुख दारिद्र्य और अभाव का विनाश होता है और परम शांति प्राप्त होती है।

ओम प्रभु शांति एक महात्मा का अनुभूत मंत्र है। इसका जाप करने से अशांति दूर होती है और विभिन्न क्षेत्रों में अनायास ही शांति प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र से हवन करके जाप करने से तत्काल मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यदि 5 मिनट भी कोई ओम प्रभु शांति मंत्र का जप कर लेता है तो उसके 23 घंटे 55 मिनट प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत मनोदास के स्वर में श्री लक्ष्मी वंदना। अब यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है, समय दोपहर के 3 बज गए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आयाज सुनते हैं गायक अरुण जमतय, जसवा हलम, प्रियंका और साथियों द्वारा गाए चरनादों ने कोकबरो गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए दोजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के छात्र सुक्षी तेंजिन थोमू से एक वार्ता। वार्ता का विषय है युवा समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम तेंजिन थोमू है और मैं दोर्जी खांडू राष्ट्रीय महाविद्यालय तवांग में 5वीं सत्र की छात्र हूँ। आज मैं यहाँ युवा समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं इस विषय पर साझा करना चाहूंगी। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलते समय में युवा सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि युवा सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन सपनों को पूरा करने का हौसला भी रखते हैं। पर सवाल ये है, हम युवा समाज के लिए क्या कर सकते हैं? हम कैसे एक सच्चा बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहला योगदान है सीखना और जागरूक रहना। जब युवा सही जानकारी रखते हैं तो वो सही फैसले ले पाते हैं। एक जागरूक युवा अपने समाज को और अपने देश को सही

0: शिक्षा दे सकते हैं। दूसरा योगदान है सेवा और संवेदनशील। कभी किसी बच्चे को पढ़ाना, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करना या अपने आसपास सफाई रखना, ये सब काम छोटा लगता है पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। समाज छोटे छोटे कामों से ही बदलता है। तीसरा योगदान है तकनीकों का सही इस्तेमाल। आज का युवा डिजिटल दुनिया का युवा है। अगर हम अपने तकनीकी ज्ञान सही दिशा में लगाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन हर जगह नए संविधान दे सकते हैं। चौथा योगदान है अच्छे मूल्य और जिम्मेदारी। जब युवा ईमानदारी, सम्मान और अनुशासन अपनाते हैं तो वो अपने परिवार, अपने समाज और पूरे देश को मजबूत बनाते हैं। अच्छी सोच अच्छे समाज बनाते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उम्मीद। युवा वो ऊर्जा होता है जो हार नहीं मानती, जो हर चुनौती में एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं और यही उम्मीद समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम सब ये निश्चय करें कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ करेंगे। हम बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं अपने आप से करेंगे, क्योंकि समाज हमसे ये नहीं पूछता कि हमारे पास क्या है। समाज बस ये देखता है कि हम क्या दे सकते हैं। धन्यवाद।
1: श्रोता, आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोजी खंड गवर्नमेंट कॉलेज दांग के छात्र सुशील तेंजिन सोमु से एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था युवा समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
2: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हो गए हैं। निर्देशोत्तर प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसूसा और सुजन डिमेलो के आवाजों में। इस गीत को बोल दिए हैं जावेद अख्तर ने तथा संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

सलीम सुलेमान के संगीत पर श्रोताओं आपने फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बॉल से शिल्पा राव की आवाज में एक गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। जीती नूरन की आवाज में टाइगर जिंदा है फिल्म से। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने तथा संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, लैला मजनू फिल्म से अतीब असलम और ज्योतिका टंगरी की आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है इरशाद कामिल ने तथा संगीत से सवारा है जय बोरिया ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं, सचिन जिगर के संगीत पर फिल्म रामाया वस्तवय से। इस गीत को गाया है श्रेया घोषल और अतीफ असलम ने।

श्रोता, अभी आपने स्वानंद किरकिरे के गीत पर फिल्म थ्री इडियट्स से शान और शांतनु मैत्र की आवाजों में एक गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, एक विलन फिल्म से अंकित तिवारी के आवाज में। इस गीत को बोल दिया है मनोज मुंतशिर ने तथा संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

गुलजार के गीत पर श्रोताओं ने फिल्म वीर से एक गीत सुना। इस गीत को गाया था राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो ने। कार्यक्रम को यही जान रखते हुए आइए सुनते हैं वांटेड फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत के रचयिता अरुण भैरव तथा संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

सचिन जिगर के संगीत पर श्रोता वैभव ने फिल्म सिमरन से गुरु रंधावा और जनिता गांधी की आवाज में गीत का आनंद लिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, एक पहली लीला फिल्म से कुमार के रचे बोल पर उज्जैर जायसवाल की आवाज में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुन पाएंगे आनंद लाल से शहनाई वादन। राग है मुल्तानी।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरंग के अंतर्गत अनंतनाग से शहनाई वादन राग था मुल्तानी। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमी जिले में आए तड़के हुई मूसलाधार बारिश के कारण कुमी नदी के ऊपरी क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। बाढ़ से जिलों के दामिन सब डिवीजन तथा पारसीपालो सर्कल सबसे अधिक प्रभावित हुए। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आज सुबह पाकी केसांग जिले के पाखरू गांव के पास सिपाही ईटानगर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 13 का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। वियतनाम में नाव डूबने में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के 4th दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेल रहा है। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमी जिले में आज तड़के हुई मूसलाधार बारिश के कारण कुमी नदी पर ऊपरी क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। यह घटना आज तड़के लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच हुई। अचानक आई बाढ़ से जिले में दामिन सब डिवीजन तथा पारसीपालो सर्कल सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। दामिन सब डिवीजन में हुई हुरी और दामिन को जोड़ने वाली पुल बाढ़ में बह गया है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हुआ। वहीं पारसीपालो सर्कल के स्थित सेंट थॉमस पैरिस बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस बीच पारसीपालो का निरीक्षण भवन भी जलमग्न हो गया है। इसके अलावा 2 आवासीय मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है तथा बैप्टिस्ट चर्च भी बाढ़ में पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बागाम गांव को जोड़ने वाला पुल भी तेज बहाव में बह गया है। इस प्राकृतिक आपदा से परिवहन व्यवस्था, सार्वजनिक आधारभूत ढांचे तथा आवासीय संपत्तियों को गंभीर क्षति पहुंची है। जिला प्रशासन राहत एवं क्षति आंकलन के लिए अर्धसैनिक बलों, पुलिस, स्थानीय लोगों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA कोलोरियांग के अनुसार नुकसान का विस्तृत

0: अभियान जारी है तथा तत्काल राहत और पुनर्बहाली की आवश्यकताओं का भी आकलन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आज सुबह पाकिस्तान जिले के पाकरो गांव के पास सिपाही ईटानगर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 13 का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। सोसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क को बहाल करने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जिला प्रशासन ने सभी यात्रियों से अगले सूचना तक इस मार्ग से यात्रा नहीं करने तथा प्रभावित क्षेत्र के से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, कुरुंग कुमे, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग और तिरप के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6 नीलगिरी श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
1: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों को, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों को जैसे दस्तावेज का सहारा लिया गया था। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वो एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल ही में उनके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई

0: सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेल रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करते हुए 60 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना चुकी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो गई है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तरीय की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत कर सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विलय किए गए आदिवासी जिलों में कर लागू करने के फैसले का तेज विरोध हो रहा है। नेता, व्यापारी और समाज के प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगले 10 वर्षों तक कर छूट जारी रखे। खैबर और अन्य पूर्व संघीय प्रशांत जनजातीय क्षेत्रों में आयोजित कई बैठकें, संवाददाता सम्मेलन और सार्वजनिक सभाओं के प्रतिभागियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने नए कर वापस नहीं लिए तो एक समन्वित विरोध अभियान शुरू किया जाएगा। खैबर जिले में आयोजित सभा के 12 और जमरूत में व्यापारियों, आदिवासी बुजुर्गों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों ने सरकार की कर नीति का विरोध किया है। वक्ताओं ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में विलय के बावजूद आदिवासी जिले अभी भी गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, खराब शिक्षा सुविधाएं, बेरोजगारी और सीमित व्यवसायिक अवसर प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नारांग कोयांग। The Supreme Court today ruled that the process of determining citizenship or declaring an individual a foreigner must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. The Apex Court was hearing a batch of petitions filed by 27 people who had been declared foreigners by the foreigners' tribunals in Assam. The Supreme Court set aside the judgments of the Guwahati High Court that had upheld declarations of 27 appellants as foreigners. A bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta acknowledged that the state has a legitimate and compelling interest in ensuring that those not legally entitled to Indian citizenship do not obtain it through false claims, misuse of legal process or delay, but stressed that the due process must prevail. The Supreme Court today directed the special investigation team constituted by the Uttar Pradesh government on alleged misappropriation of donations in the Ram Janmabhoomi temple to submit a status report on the investigation. The court also issued notice to the Union Government, the Uttar Pradesh government and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust on petitions seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. President Draupadi Murmu has taken cognizance of the issue of Jharkhand workers affected by the ammonia gas leak in Tamil Nadu following a petition filed by government pleader Sanjeev Kumar Ambashta of Ramgarh district in Jharkhand. The President's Secretariat has directed the Secretaries of Employment and Labour to take immediate necessary action and submit a report on the steps taken. The petition has sought the safe return of the affected workers of Jharkhand along with financial assistance, compensation and rehabilitation. In West Bengal, 2 new anti-crime laws have become effective from today. Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. The State Assembly passed the 2 stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill and the West Bengal Maintenance of Public Order Bill. In Bihar, Chief Minister Samraj Chaudhary launched the Bihar Heli Tourism and Air Tourism Service Scheme in Patna today. An online booking portal for the service was also inaugurated. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that the scheme has been launched to improve tourism in the state and to enable people to explore and experience Bihar more conveniently. In the first phase of the scheme, the destinations covered are Patna, Valmiki Nagar, Ma Mudeshwari and Rajgir. The state government will provide a subsidy of up to 15,422 rupees per ticket. The helicopter

자리 여기서 준주 씨만 내가 송한 것도 나는 가당 가당이야. 소지다 생모도든 참.

Oh,